0: ऐकत आहात MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: हेलो हाय नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो. All is well. RJ Adnan ka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. और हर सुबह मैं आपको इस वक्त एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. इसका मकसद तो यही है कि हमारी जिंदगी में भी ना तो इस कहानियों के जरिए कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश हम करते हैं. एक लड़का था, रोज सुबह उठकर एक पहाड़ पर चढ़ता था. लोग उसे देखते और हंसते. हर दिन चढ़ता, ना कोई मंजिल मिलती, ना कोई फर्क दिखता. लोग उसे बेवकूफ कहते, लेकिन वो कुछ नहीं कहता उन लोगों को. बस अगली सुबह फिर चढ़ना शुरू कर देता. वैसे अपनी जिंदगी सेम ऐसे ही है. हम रोज मेहनत करते हैं और कई बार लगता है कोई रिजल्ट नहीं यार, कोई तारीफ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है. लोग पूछते हैं क्या फायदा इतना करने का. पर असली बात तो यह है, जब तक तुम चलते रहोगे तुम हार नहीं सकते. एक दिन वो लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया. उसने नीचे देखा, वही रास्ता, वही लोग, पर अब नजरिया बदल चुका था. क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होते हो तब दुनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारी मेहनत को सलाम करती है. आज का दिन भी आपका शायद एक चढ़ाई जैसा लगे, लेकिन याद रखना हर एक कदम मायने रखता है. रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते रहो. क्योंकि जब तक तुम चलोगे एक वक्त बाद तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी. और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना. DM on Insta RJ Adnan and सुनते रहना MGM 90.8 FM पर. ये मेरा शो.

मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजी अदनान और आप सुन रहे हो All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MTM 90.8 FM। क्या आप जानते हो कि एक ऐसी जादुई चीज है जो आपके किचन में ही मौजूद है और आपके शरीर का रिबूट बटन दबा सकती है? नहीं, मैं किसी महंगी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। तो हेल्थ टिप्स में जरा इसके बारे में जानते हैं, पानी का जादू। नियम बहुत सिंपल है, सुबह आँख खुलते ही चाय या कॉफी से पहले बस एक गिलास गुनगुना पानी। जैसे ही हल्का गर्म पानी आपके अंदर जाता है, ये आपके शरीर के सफाई तंत्र यानी कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म करते हैं यानी कि किक मारते हैं, उस तरीके से। ये जादुई गिलास ना आपकी स्किन को ग्लो कर देगा, इसी के साथ रात भर जमा हुआ टॉक्सिक यानी गंदगी को भी बाहर निकाल फेंकेगा। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि आपके पाचन तंत्र को भी जगाता है और आपको पूरे दिन एनर्जी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके और पेट हल्का रहे तो सुबह इस जादू को आजमाइएगा, गुनगुना पानी पिएगा। तो बस अपनी सेहत के लिए एक घूंट प्यार का, मेरा मतलब है गुनगुने पानी का। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये हेल्थ टिप्स में बातें याद रखिए और ढेर सारी मस्ती और गानों के साथ सुनते रहिए।

बायदवे आज है गुरु पूर्णिमा। वैसे गुरु ना तो हमारे लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई महान इंसान ही हमारे लाइफ में हमारा गुरु होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अपने एज का हो, कोई अपने दोस्त हो, वो भी हमारे गुरु होते हैं। और हम जिस इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में गुरु का किरदार निभाता है। सो मैं एक चीज़ मानूंगा कि मैंने ज़िंदगी में ना तो एक ऐसी चीज़ सीखी कि हर किसी को रिस्पेक्ट दो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, और बस प्यार से बात करो। तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे सीखने को मिली। अब वो चीज़ किससे सीखने को मिली? वो मिली मुझे मेरे ऑफिस के वॉचमैन से, वॉचमैन भैया, मतलब उनसे एक चीज़ मैंने सीखी कि और वो कोई भी आओ ना, चाहे उनसे एज में छोटा हो बड़ा हो, सेम एज का हो, वो हर किसी को हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, खाना हो गया क्या, चाय हो गई क्या, क्या चल रहा है लाइफ में, ये बातें उनसे करते हैं, मुझसे भी करते हैं। और ये चीज़ मैंने उनसे एक सीखी कि यार आप चाहे भी कोई भी पायदान पर हो यार, बस एक बात याद रखो, तरबियत से, अच्छे से, दिल के ज़रिए लोगों से बात करो और उनके हाल हवाल पूछो। क्या है ना, किसी से बस हेलो करने से, एक स्माइल करने से भी ना, तो सामने वाले का दिन बन जाता है। तो ये मोमेंट पर एक ज़िंदगी का अहम सबक सिखाने के लिए वो वॉचमैन भैया मेरे गुरु थे। वैसे अपने भी ज़िंदगी में ना तो बहुत सारे गुरु होते हैं। रेडियो में जिन्होंने मुझे लाया वो भी मेरे एक बहुत ख़ास गुरु है, जिनकी वजह से मैं रेडियो में आया हूँ। सो आपके भी लाइफ में ना तो ऐसे कोई गुरु हो गए ना, तो ज़रा बताइए उनके बारे में और उन्हें आप क्या कहना चाहते हो, चाहे वो गुरु कोई भी हो यार, बताइए। कॉल करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। एंड गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

पहन कर कैसा तू थे फांदे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू थे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे

तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा।

कुछ इंसानों की बहुत बुरी फितरत होती है और अच्छी चीजें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसा ही अपने शहर में हो गया है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 FM। और अभी बरसात का मौसम शुरू है और हम सभी लोग घूमने जाते हैं, महेशमाल जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, अपने शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है घूमने के लिए। और पिछले एक महीने के अंदर एक प्लेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी सोशल मीडिया पर, हर कोई वहाँ पर जा रहा था। और जिनजी के अंदर इसका एक अलग ही ट्रेंड था, दैट्स कॉल वन ट्री। बुद्ध लेणीच्या डोंगरावरील तलावाकाठी ना वर्षानुवर्ष एक झाड होतं आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याला खूप पसंती मिळाली होती आणि एक टुरिस्ट स्पॉट सुद्धा ते झालेलं होतं। अनेक जण तिथं गेले होते, फोटो वगैरे क्लिक केले आणि सोशल मीडियावर एक वेगळाच फॅन बेस या वन ट्रीचा तयार झाला होता। लेकिन कहते ना, कुछ अच्छी चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। वो अच्छा खासा झाड एक रात में तोड़ दिया गया है, त्याच्यावर कुऱ्हाड चालवली आणि त्या झाडाचा खून करण्यात आला असं आपण म्हणू शकतो। म्हणजे बघा ना, किती सुंदर ती जागा होती, स्पॉट होतं, लोक तिथं येत होते, फोटो काढत होते आणि एक टुरिस्ट प्लेस झालं होतं। पण काही लोक असतात ज्यांना चांगलं होताना काही दिसत नाहीये आणि यातून एक गोष्ट शिकायला मिळाली की आता माणूस फक्त माणसाचाच नाही तर या निसर्गाचा सुद्धा शत्रू बनलेला आहे। 8 लाखांहून जास्त पोस्ट या वन ट्रीच्या शेअर करण्यात आल्यात इंस्टाग्रामचे रील्स आणि पोस्टच्या माध्यमातून। देखा जाए तो ये बस एक ट्री की बात नहीं है यार, अपने शहर में ऐसे बहुत सारे पेड़ जो काटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो उस पर भी लोगों ने आवाज उठानी चाहिए एंड डेवलपमेंट के नाम पर बस पेड़ों को नहीं मारना चाहिए। खैर, आप क्या ही करें, फितरत होती है ना इंसान की, बदलेगी पता नहीं। स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: दुनिया।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। अगर दिन थोड़ा मुश्किल भी रहा हो तो अब समय है खुद को थोड़ा आराम देने का। शाम का अपना ही अलग एहसास होता है। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ठंडी हवा चलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक कर सुकून की सांस ले रही हो। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। अगर आज कुछ अधूरा रह गया तो चिंता मत कीजिए, कल फिर एक नई सुबह आपका इंतजार करे। इसलिए बीती बातों को यही छोड़ दीजिए और इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनके साथ मुस्कुराइए, अगर दोस्तों के साथ हैं तो कुछ अच्छी बातें कीजिए और अगर अकेले हैं तो अपने पसंदीदा गाने सुनिए, एक कप चाय या कॉफी का मजा लीजिए और खुद के साथ कुछ पल बिताइए। याद रखिए, छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को सबसे खूबसूरत बनाती है। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस प्यारे से शाम को अपने दिल में बसाइए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गीत की ओर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अच्छी वाइब्स और अच्छा संगीत हमेशा आपके साथ है। ओनली ऑन एम जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं कि किस्मत सबकी होती है लेकिन उसे बेहतर बनाना हमारे हाथ में होता है, इसलिए हमेशा दूसरों का इंतजार करने की बजाय अपनी किस्मत खुद लिखना सीखिए। जिंदगी में रास्ते आसान नहीं होते, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता भी सामने आ जाती है, लेकिन जो इंसान हर मुश्किल के बाद भी हिम्मत नहीं हारता वही आगे चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचता है। वेल, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते और हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपकी किस्मत भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि किस्मत सिर्फ इंतज़ार करने वालों का साथ नहीं देती बल्कि मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, शिकायत कम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, डर कम रखेंगे, हौसला बड़ा रखेंगे और हर नए दिन को एक नए मौके की तरह अपनाएंगे। याद रखिए, आपकी कहानी का सबसे मजबूत किरदार आप खुद हैं। आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपकी पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तभी वो अपनी किस्मत खुद लिखना भी सीख जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी अचानक बाहर का कुछ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाने का मन करने लगता है, लेकिन हर बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ना आज वही मज़ा घर पर लिया जाए। घर में ही बनी गर्मा गर्म काना भजिया, पकोड़े या आपकी पसंद का कोई भी नाश्ता, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। अपने हाथों से बना खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि अपनेपन का एहसास भी दिलाता है। और सबसे अच्छी बात, घर का खाना साफ सुथरा होता है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है और मन भी खुश हो जाता है। अगर परिवार साथ बैठकर चाय और गर्मा गर्म भजियों का मज़ा ले तो शाम और भी यादगार बन जाती है। तो अगर आज आपका भी बाहर का खाने का कोई मन कर रहा है तो एक बार रसोई की तरफ ज़रूर जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, गर्मा गर्म भजिया बनाइए, चाय तैयार कीजिए और अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए इस पल का आनंद लीजिए। और अगर लगा तो हम लोगों को भी भेज दीजिए हमारे एमजीएम 90.8 एफएम के स्टूडियो में। याद रखिए, खुशियां हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी एक कप गर्म चाय, गर्मा गर्म भजिया और अपनों का साथ ही पूरे दिन की थकान दूर कर देता है। इसी प्यारी सी बात के साथ अब समय है एक शानदार गाने का। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी ज़िंदगी भी कितनी दिलचस्प होती है, जिन लोगों से मिलने की हम उम्मीद नहीं करते या जिनसे मिलने से थोड़ा घबराते हैं, अचानक एक दिन वही सामने आ जाते हैं। ऐसे पल हमें हैरान भी कर देते हैं और मुस्कुराने की वजह भी देते हैं। शायद यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अंदाज है। हर मोड़ पर कोई नई कहानी, कोई नया एहसास और कोई नई याद हमारा इंतज़ार कर रही होती है। कई बार हम किसी बात से डरते हैं, लेकिन जब वही बात सच होती है तो पता चलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मुलाकातें हमें नई सीख देती है, कुछ पुराने रिश्तों की याद दिलाती है और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। इसलिए ज़िंदगी के हर पल को खुले दिल से अपनाइए। कौन सी राह पर कौन मिल जाए, कौन सी मुलाकात आपकी मुस्कान की वजह बन जाए, ये कोई नहीं जानता। तो मुस्कुराते रहिए, दिल खुला रखिए और ज़िंदगी के हर सफ़र का आनंद लीजिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत कहानियाँ अक्सर बिना किसी प्लानिंग के ही शुरू होती है। इसी प्यारे से एहसास के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा शानदार गाना जो अनचाही लेकिन यादगार मुलाकातों की खूबसूरती को बेहद ही दिल से बयां करता है। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit mgm campus N6 को छत्रपति संभाजीनगर।
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM University Institute of Indian and Foreign Language लेकर आया है BA Honors in English, MA English, MA Marathi, MA Hindi, MA Urdu, MA Sanskrit, PG Diploma in Arabic. Diploma programs, Creative Writing in English, Sanskrit, French, German, Urdu, Japanese, Persian and Translation.
2: Limited seats available. Visit www.mgmu.ac.in or call kare 9763679245 or 9665353515.
4: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
5: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला ऍडमिशन घेणार आहे.
4: इथे कोणते कोर्सेस आहेत?
5: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG Diploma, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग.
6: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज.
7: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे. यासोबत टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
6: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक मजबूत देश वही होता है जहां सरकार और जनता के बीच भरोसा, सम्मान और अच्छा तालमेल हो। सरकार का काम है लोगों की जरूरतों को समझना और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना। वही जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, नियमों का सम्मान करे और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। जब सरकार और जनता एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब समाज में शांति, विकास और खुशहाली आती है। दोस्तों, बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आता और न ही सिर्फ जनता से। असली बदलाव तब आता है जब दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे पर भरोसा, सहयोग और सकारात्मक सोच ही किसी भी देश को आगे ले जाती है। आइए हम सभी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, अपने आसपास सफाई रखें, नियमों का पालन करें, एक दूसरे की मदद करें और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत बनाएं। याद रखिए, एक अच्छा देश बनाने में सरकार और जनता दोनों की बराबर की भूमिका होती है। जब दोनों मिलकर कदम बढ़ाते हैं तभी विकास की राह आसान बनती है और हर नागरिक का भविष्य बेहतर होता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गाने की ओर। सुनते रहिए आप अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हर इंसान के मन में कुछ न कुछ विचार होते हैं। अपनी बात कहना, अपने विचार साझा करना और अपनी राय रखना एक स्वस्थ समाज की पहचान है। इसी को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी कहते हैं। जब लोग अपनी बात खुलकर और सम्मान के साथ कह पाते हैं तो नए विचार सामने आते हैं, समस्याओं के समाधान मिलते हैं और समाज आगे बढ़ता है। अलग अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन एक दूसरे की बात सुनना और उसका सम्मान करना भी उतना जरूरी है। और दोस्तों, बोलने की आज़ादी का मतलब ये भी है कि हम अपनी बात जिम्मेदारी के साथ रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सच पर आधारित हो, किसी का अपमान न करें और समाज में नफरत या हिंसा न फैलाए। जब आज़ादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ती है तभी उसका सही अर्थ सामने आता है। एक मजबूत समाज वही होता है जहाँ लोग बिना डरे अपनी बात कह सके और साथ ही दूसरों की राय को भी पेशेंस से सुन सके। बातचीत, समझ और सम्मान ही हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। तो आइए अपनी बात भी कहें, दूसरों की बात भी सुनें और मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जहां सम्मान, विश्वास और संवाद हमेशा बना रहे। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गाने की ओर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MJ 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हर देश की अपनी एक मजबूत नींव होती है और हमारे देश की ये नींव है हमारा संविधान। यही वो दस्तावेज है जो हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। संविधान हमें सिखाता है कि सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर है। ये हमें न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। और जब हम अपने संविधान पर भरोसा रखते हैं, तब हम लोकतंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। किसी भी मतभेद का समाधान बातचीत, कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का सम्मान करें, अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। यही सोच समाज में विश्वास, शांति और एकता को मजबूत करती है। आइए हम सभी मिलकर ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां संविधान के मूल्यों का सम्मान हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हम सब मिलकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इसी सकारात्मक विचार के साथ अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा गाने की ओर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते ये खूबसूरत शाम भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि आज का हमारा साथ, हमारी बातें और आपके पसंदीदा गानों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। अगर आज का दिन थोड़ा कठिन रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, कल एक नई सुबह नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आपका इंतजार कर रही होगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनों के साथ समय बिताइए और सबसे जरूरी बात अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को सबसे खास बनाती है। आपका प्यार, आपका साथ और आपका भरोसा ही हमें हर दिन आपके बीच आने की प्रेरणा देता है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नए जोश, नई बातों और शानदार गानों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपनों की ओर बढ़ते रहिए। नमस्कार, गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
4: तुझं अजूनही डिसाइड झालं नाही?
5: झालं रे, मी MGM युनिव्हर्सिटी म्हणजेच MGM युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
4: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
5: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783891 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
6: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
7: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
6: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in।

कुछ इंसानों की बहुत बुरी फितरत होती है और अच्छी चीजें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसा ही अपने शहर में हो गया है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और अभी बरसात का मौसम शुरू है और हम सभी लोग घूमने जाते हैं, महेश माल जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, अपने शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है घूमने के लिए। और पिछले एक महीने के अंदर एक प्लेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी सोशल मीडिया पर, हर कोई वहां पर जा रहा था और जिनजी के अंदर इसका एक अलग ही ट्रेंड था, दैट्स कॉल वन ट्री। बुद्ध लेणीच्या डोंगरावरील तलावाकाठी ना वर्षानुवर्षे एक झाड होतं आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याला खूप पसंती मिळाली होती आणि एक टुरिस्ट स्पॉट सुद्धा ते झालेलं होतं। अनेक जण तिथं गेले होते, फोटो वगैरे क्लिक केले आणि सोशल मीडियावर एक वेगळाच फॅन बेस या वन ट्रीचा तयार झाला होता। लेकिन कहते ना, कुछ अच्छी चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। वो अच्छा खासा झाड एक रात में तोड़ दिया गया है, त्याच्यावर कुऱ्हाड चालवली आणि त्या झाडाचा खून करण्यात आला असं आपण म्हणू शकतो। म्हणजे बघा ना, किती सुंदर ती जागा होती, स्पॉट होतं, लोक तिथं येत होते, फोटो काढत होते आणि एक टुरिस्ट प्लेस झालं होतं। पण काही लोक असतात ज्यांना चांगलं होताना काही दिसत नाहीये आणि यातून एक गोष्ट शिकायला मिळाली की आता माणूस फक्त माणसाचाच नाही तर या निसर्गाचा सुद्धा शत्रू बनलेला आहे। 8 लाखांहून जास्त पोस्ट या वन ट्रीच्या शेअर करण्यात आल्यात इंस्टाग्रामचे रील्स आणि पोस्टच्या माध्यमातून। देखा जाए तो ये बस एक ट्री की बात नहीं है यार, अपने शहर में ऐसे बहुत सारे पेड़ जो काटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो उस पर भी लोगों ने आवाज उठानी चाहिए एंड डेवलपमेंट के नाम पर बस पेड़ों को नहीं मारना चाहिए। खैर, आप क्या ही करें, फितरत होती है ना इंसान की, बदलेगी पता नहीं। स्टे ट्यून।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

तेरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे,

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ